0: কে শুন চাহানো হচ্ছে তাই
1: মাত্রই হো
0: অরু পনি তো ছানি
2: অঙ্গাল তিম্রো ন্যানো অঙ্গাল
0: यस्तै यस्तै मिठा मिठा गीत संगीतहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने
3: सुरीली अखियों वारे सुना है तेरी अखियों से
0: मात्र ट्युन गर्नुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 99.5

0: कल्याण नेपाल निर्माण को आधार निरंतर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: यति बेला मध्याह्नको 12 बज्यो।

0: जोर।
1: अयरे दया लौरा महीना दे
2: हो महीना जानो मही का गिलबा दिल के धड़कन बड़ा तेज हुई गिलबा जब से मैं देखनो
0: ओए होए
2: जब से

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई
1: के सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईं।

0: ओहो तोहर राजा जी के दिलवा टूट जाई, तोहर राजा जी के दिलवा टूट जाई। बल्ल घर को पर्खाल लिपपोत कर सकिन लाग्यो।
1: मुस्कान छोरी, ए मुस्कान छोरी, घर को पर्खाल लिपपोत कर सकिन भने खेत में काम करने खेतला खाजा लगदिन पर्ने थियो।
0: सकिन लाग्यो आमा लिपपोत कर।
1: ए ल ल म खाजा तयार गरेर राखिदिन्छु, लगिदिनु है त।
0: हुन्छ आमा। ओहो हेर यहाँ पर्खालमा त दुलो पो रहेछ, माटो चाहिँ पुरिदिनु पर्यो कि क्या हो? पुरिदिनु पर्यो।
2: ओया आमा लौ न मलाई सर्पले पो टोक्यो।
1: लौ न खै खै कहाँ टोक्यो छोरी?
2: दाहिने हातमा टोक्यो आमा।
1: लौ न को हुनुहुन्छ? मेरो छोरी मुस्कानलाई सर्पले टोक्यो। लौ न लौ
3: के भयो काकी?
1: हेर न राकेश, मुस्कानलाई सर्पले टोक्यो भने
3: नातिनु काकी। अनि मुस्कान नातिकनै शान्त भएर बस है।

0: बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गाँव, बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गाँव। धीरे धीरे चल रे अजोरिया धरी धरी पाँव।
1: उफ़, अब जाए की घर के देवाल लिपोती के ओराए लाग।
2: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
1: ओराए लाग अम्मा।
2: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
1: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
3: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप डसलीस।
2: अरे बाप रे बाप, कहाँ डसलीस बिटिया?
3: यही दही हाथ में डसलीस अम्मा।
2: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का सांप डसलीस। अरे क्यों है, क्यों है?
4: अरे का हुई गवा, का हुई गवा काकी?
2: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप डसलीस की काओ।
4: ना घबरा बजाय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
2: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
1: वो तय
4: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कर दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
2: हो थे बाबू, और सांप दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
4: नहीं काकी नहीं, सांप दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
2: तब तो गहर मोहरा लाई के सपुआ डसी लिए जगह पर लगाई गई तो बाबू।
4: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
2: बुझेन बाबू बुझेन।
4: काकी, बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये। कहा जाए तब तक हमरे के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है? हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ, डाटा हम कैसे देखे पड़ा? हाँ, देव snakebitenepal.org